आधिकारिक डिलर्सर प्रजल पेड खादारी तीन मंगला देवी थान सुमंचक प्रोप्राइटर धनबहादुर रसाइली सम्पर्क नम्बर 98551 753 र 029560553।

0: सक्दिन, श्वास प्रश्वासमै समस्या देखियो।
1: धुमपान गर्न छोडौ, स्वस्थ जीवन बाँचौ।
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफान गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्रिचोक प्रोभाइडर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 98621 37744 र 98153 87775।

अरू एकजना होला नि छोरी तिम्रै छोरी मलाई चाहिँदैन चाहिँदैन चाहिँदैन चाहिँदैन लु भइगयो बरु अन्त खोजौँला